सेवा की थी। जातन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे, फिर बसंत कौर नो 100 सवारा दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया सास। ए है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए, हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करे।

हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दे मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सबै रन को आज सिंघरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे।

तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिन सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा वै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं पव। आप रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तु तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट न है ऐ है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्वस कहन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा।

दुष्ट दुख ते लिहु बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला, सुनै गुण

सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का हो बिचारो तित कर गावो सोहेला शिव रहो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपाव का सोहेला हाँ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े समारियन दिख्या गा देवनहार तेरे दान कीमत न पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असी सड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल कर करिहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहा विसुए चसियां कड़ियां पहरा तेते वारी माह होआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आण लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खड़ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सह सब नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूर्त नना एक तोहे सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस दया चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंत लोभित मनो अन

चौथा काम क्रोध नगर्भ भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लि मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हार रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पावै जमकाल सहस्र डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भाव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे।

0: जब लो नहीं भाग लीला रुदय तब लो भरमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र मैं बूढ़ थे कबू मिट है नहीं रे पछतायो तात विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन कर बनायो तात विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन कर बनायो।
1: वाहिगुरु जी।

सोई सोई सदा सचाय साचा सचिनाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई ज्योतिष भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई मुंदा संतोख सरम पद झोली ध्यान की करह विभूत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत भुक्त ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे ना।

0: रेख
1: जय सौर पेश जाकर रूप रेख न राग
0: फैले अनुराग
1: नाम कामहीन पेकत तामुने जाहे
0: सर्व मांस वत्र मांस दैव

0: कर पर्वत पंख हले न हलेंगे।
1: माते मतंगन मान मलेंगे।
0: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
1: वीर अपार बड़े बड़े अर अबे बचार सार की तार बशैया।
0: तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया।
1: गाड़ी गुरान के तोड़न हार सो बातन ही एक चार लवैया।
0: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया।
1: दान देव फिनंदन साचर पूत पे

0: सो वैस बतायो।
1: साच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
0: काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो।
1: काहू लिखियो हर

0: जावे बैठा को सिमट पर शंकर गैठा
1: सजी शेष दिखाई चंबवा जुगा श्री उंबल
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बाण सिख सुन करो
1: दुष्जिते उत्पत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता
0: ज्येष्ठ सरनी पर तिनके दुष्ट के तो अंबर है
1: पुरख जवन पग परि तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे
0: जो कर को एक बार त्याये ताके काल निकट नहीं है
1: रक्षा होए ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट रे।

0: कथा सुनाए अपने से गुरुद्वारे सुख पावे।
1: कहे नानक सचे साहे ज्यो पावे ते वह चलावे।
0: ए सुवेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुवेला सतगुरु सुनाया।
1: एहो तिन के मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया।
0: एक फिरे कनेरे करे गला गली किने ना पाया।
1: कहे नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया।
0: पवित हो से जना जिनी हर ध्याया।
1: हर ध्याया पवित होए गुरमुख जिनी
0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सियो पवित्र संगत सभाया।
1: कह दे पवित्र

0: ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे
1: पशुपसुरंग नाग नराधर सर्व सभे सब को प्रतपाले
0: भोगत है जल में थल में पल में कल के नी कर्म बिचारे
1: दीन दयाल दयाल दुख देखत है पर देत नहारे
0: दाल है दुख दोखन को दाल दूजन के पल में दल डारे
1: खंड खंड पचन पहारन पूरन प्रेम की प्री संभारे
0: पार न पाए सके पद्मापत भेद कतेव भेद उचारे
1: रोजी राज विलोखत राजग रोग रुहान की रोजी ना टारे
0: निज बतांगो करंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए
1: देव मधेव खपे उमेव न पेव लख्यो प्रम सिंह परमाए
0: वेद पुराण कतेव कुरान वेद पुराण कतेव कुरान हसेव तके कर हाथ नाए
1: पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पश्चिम श्री पद्मा पद पाए
0: आद अनंत अगाध द्वैक सो भूत भविख भवान अपह
1: अंत विहीन अनातम आप अदाग अदोग अछिद्र अछे
0: लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभ है
1: दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मा पद ए है
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न पह
1: देव महीन सभे सभो तने

0: अपनों कर दे कर पाप सबू ना पेटन पावे
1: और की बात कहा कह को सो पेट ही के पट बीच बचावे
0: जज भुजंग सो दानव देव पेव तुम्हें सभी कर त्यावे
1: मकास पताल रसावल जज भुजंग सबे से न्यावे
0: पाए सके नी पार प्रभाओं को नेति नेते वेद बतावे
1: थके सब ही खुजे आसुर हार परे हर हाथ ना
0: नारद से चुदरारन से रुम नारक से सब हूँ मिल गायो
1: वेद कतेब न पेद लख्यो सब हार परे हर हाथ ना आयो
0: पाए सके नी पार उमा पत से दसनाथ सनंतन त्यायो
1: ध्यान तरो तेन तुम मन में जय को अमितो सबे जग छायो
0: वेद पुराण कतेब कुरान अपेद निर्पाण सबे पछारे
1: वेद न पाए सके उन पेद को खेदत है अनछेद पुकारे
0: राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न सांग त्यारे
1: अनाथ अगाध अद्वैत भेद जपे तिन ही गुण

उचेतेउ च भगवन्त सकल सामग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते तुमरी गात मेत कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहा

अमृत छाड़ भिखै मिख खाई, माया मोह परम पै पुले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनया गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की,

गई शंका टूट, दुख अनेरा पै विनाशे, पाप गए निखूट, गुर प्रसादी प्रभ त्याया, गई शंका टूट।

दृढ़ नानक हर हर शरण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा गुरप्रसादी प्रभ त्याया गई शंका टूट पै बिना से पाप गए निखूट।

तू गुरु दी नरादरी करदा है। सारा कुछ देण वाला ते ओ है, अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोने गलीचे ते वड्डे कमरे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश पौड़ियां थले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लवे, साडिया नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की दे करके नहीं मनते। ओए गुरसिखा, खुशियां ते तेरे मगर मगर फिरनगियां, तू किते गुरु नूं प्रगट गुरां की दे मन के ते देख, इसका सत्कार करके ते देख। तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है, ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। एवें उपरों उपरों आखी जांदा है भी सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा, की तेरी भावना नूं होया है? जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता ओदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने, उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है? नहीं बई, दिलों आख मनो आख सतगुरु, सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच